कोई बालक जन्म लेता है तो सबसे पहले रोता है, नहीं रोता है तो उसको रुलाया जाता है, और वो जैसे रोने लगता है सब खुशी मनाने लगते हैं। भक्त कबीर ने बड़ी गहराई से सोचा इस बात को और महान संदेश दे दिया।

0: 102.7 FM, आपका धर्म आपका स्टेशन रेडियो जागृति।
1: जय सीताराम। मल मास और अधिक मास ऑल्सो नोन एज पुरुषोत्तम मास इज द एस्ट्रोलॉजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ एन एडिशनल मंथ इन द हिंदू कैलेंडर प्राइमरीली बेस्ड ऑन द साइकल्स ऑफ द मून। द लूनर मंथ इज अराउंड 29.5 डेज एंड द सोलर मंथ इज 30

0: देखो भगवान परशुराम आ गए, बहुत क्रोध में लगते हैं। क्या वो फिर क्षत्रियों का वध करेंगे?
1: नहीं नहीं, उन्होंने इंद्र को वचन दिया है कि वो अब कभी भी क्षत्रियों पर शस्त्र नहीं उठाएंगे।